0: मेरा नाम दिव्या दीक्षित है. सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स. और पहले मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में. उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह. पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे, तो फिर पापा ने मुझे सिखाया, कार सिखाई. जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी, तो फिर ऐसे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो. उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए. इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना, तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट. वी लिव इन अ मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ, ये इससे मत खेलो, उससे मत खेलो, या फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स.
1: सेकंड गियर फुल क्लच. देखो कितना अच्छा है ना मेरा गियर बॉक्स.
0: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा. लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है.
1: अभी हमें फिर से राइट जाना है. ओके स्लाइटली. ओके
0: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता. तो सिखाने में मतलब वो वहां तक हमें पहुंचना है, बहुत दूर है. अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ, तो फिर उनको डर नहीं लगेगा, बिकॉज बीइंग अ गर्ल. लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए, तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है. उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह. लेडीज़ को मतलब लेडीज़ के साथ ही कंफर्टेबल होता है. बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो. लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है, मैं उनको समझ सकती हूँ, या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी. नो, आई एम नॉट देयर टू जज. इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए. जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो. ठीक किया, तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th day पे, इट्स 10 days कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट. जो मैंने कमाई है इन 8 सालों में, वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती. इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना, कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पे. और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो, तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. एनीवन कैन ड्राइव, एनीबॉडी कैन ड्राइव. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है. मतलब

0: कैब ड्राइवर्स भी, अभी तो है ना ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए, आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है। एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ।
1: That's all from Made Today. We uncovered hidden oil wells in Los Angeles, a green hydrogen project on Mallorca, an AI chauffeur in Estonia, and a trailblazing driving instructor in India. Take care.

0: surprise you. Men are more likely to speed and drive drunk and are more likely to cause serious crashes. In many countries, women drive just as much as men. But in India, fewer women get behind the wheel. We meet one instructor who's driving change.
1: ऐसे बचपन से ही एक लड़के को कैसे कार देते हैं कि खेलो इसके साथ तो लड़कियों को क्या देते हैं डॉल क्या अच्छा लगता है स्पीड तो मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स और पहले मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है या वगैरह वगैरह पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी तो फिर ऐसे ऐसे कोई भी चीज नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट We live in a main dominating society. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ ये इससे मत खेलो उससे मत खेलो या फिर बहुत सारे restrictions. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब inferiority complex.
2: Second gear, full clutch.
1: देखो कितना अच्छा है ना मेरा gearbox. जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है
2: अभी हमें फिर से राइट जाना है ओके स्लाइटली ओके
1: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहां तक हमें पहुंचना है बहुत दूर है अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊं तो फिर उनको डर नहीं लगेगा बिकॉज बीइंग अ गर्ल लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है मैं उनको समझ सकती हूँ या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊँगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी नो आई एम नॉट देयर टू जज इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए जॉब नहीं है वो क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो ठीक किया तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th डे पे इट्स 10 डेज कोर्स सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे

0: theory. More than 700 clients I have taught. जो मैंने कमाई है इन 8 सालों में वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती. इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है. मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पे. और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है. और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो. एनीवन कैन ड्राइव, एनीबॉडी कैन ड्राइव. मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है. मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना, ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए. आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है. एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूं?
1: That's all from Made Today. We uncovered hidden oil wells in Los Angeles, a green hydrogen project on Mallorca, an AI chauffeur in Estonia, and a trailblazing driving instructor in India. Take care.

0: Foods end up in landfill. Together with household waste, they become dirty and stained and unsuitable for further processing. Then there's another problem.
1: These garments or these textiles are heavily blended. More than 50% post-consumer textile waste is blended, not made out of any pure one fabric, which is why it is very difficult to recycle, difficult to manage.
0: This textile recovery center in Navi Mumbai is looking to bring change. 200 kgs of old clothes arrive here every day. Special containers have been set up in nearly 150 residential communities, where residents can dispose of their old clothes separately from their household waste. Workers from various local organizations sort the clothes according to quality and material.
2: जो टैग और विदाउट टैग वाला जो टैग वाला रहता है ना वो हम लोग रियूज में निकालते हैं और विदाउट टैग वाला मतलब जो कपड़ा अच्छा लगता है उसका कलर में कुछ डिफरेंस नहीं है कलर पे अच्छा है ज़्यादा रियूज नहीं हुआ होगा तो हम लोग रियूज में निकालते हैं और अपसाइकलिंग में जैसे कि डेनिम्स ट्रैक पैंट शर्ट ये सब हम लोग अपसाइकल में निकालते हैं जिससे कुछ तो प्रोडक्ट बन सकते हैं और डाउन साइकिल में जैसे कि ड्रेस रहेगा जिसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ या कुछ तो ऐसे ऑयल दाग ऐसे जो रहता है ना थोड़ा सा फटा हुआ तो हम लोग डाउन साइकिल में निकालते हैं।
0: The recovery facility began operations in October 2024, giving work to 80 women. They are employed by a non-profit that is a partner in the project. It was the Navi Mumbai Municipal Corporation that set up the recovery center. It remains a key sponsor.
3: कि जो भी कपड़ा वहाँ पे आएगा वो पूरा उसका सर्कुलर प्रोसेस होगा वो लीनियर प्रोसेस नहीं होगा सर्कुलर प्रोसेस की वजह से क्या हो जाएगा जो आया है वो पूरा यूज में आ जाएगा और उससे कुछ इकोनॉमी भी जनरेट हो जाएगी
0: इन द अपसाइक्लिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस टेक्सटाइल वेस्ट इज टर्न्ड इनटू बैग्स ज्वेलरी स्टेशनरी एंड जैकेट्स ऑन द अदर हैंड स्ट्रेचेबल क्लोथ्स लाइक लेगिंग्स एंड टी शर्ट्स आर टर्न्ड इनटू टेबल रनर्स बैग्स and soft toys.
4: एक भी कपड़ा हम एक चिंदी भी मिस वेस्ट जाने नहीं देते हम छोटे छोटे जो क्लॉथ्स होते हैं उनको एक पोटली में भर के उसके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो हम धागे से लेकर बड़े से बड़ा कपड़ा हम पूरा यहाँ पर यूज़ करते हैं यहाँ यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ कोई सी भी नहीं है
0: The recovery center is a success story for the city. Last year alone, 45 tons of old clothes were upcycled into new products. The recovery center can't yet process all textile waste. Low-quality fabrics from the fast fashion industry in particular are a problem. Waste management experts believe the textile industry itself should be held accountable. This is known as Extended Producer Responsibility or EPR. India already has laws governing EPR for some types of waste, but not yet for textiles. An EPR policy could also require manufacturers to take back clothes and implement recycling schemes. Sejal Sachdeva doesn't yet have a container in her neighborhood. But more are due to be added soon. It would also help if consumers wore their clothes longer and replaced them less often. But that's another story.
5: Who gets to decide what our future looks like? The people making the money, the people making the rules, the old men in power, or the younger ones who have to live in the future? The traditionalists or the experimentalists? Think and tell me. Talk to us on social media. I will see you very soon. Until then, keep vibing. Namaskar. And as the Gen Z say, bye.

0: Vlad Belopolsky plans to use self-driving cars to transport freelance cleaning staff to and from his clients' homes. The goal is to eliminate the use of conventional cars.
1: Blink gives us an opportunity to scale without scaling our assets, and also it helps us to bring equality for the cleaners. Cleaners don't need to have a car.
0: In addition to business customers, it could also be of interest to families, Blick says.
2: For example, children to the school, wife to the to work, so they can use like one car for that reason, and that car can always move to back to the garage, for example.
0: But Blick cars are not yet allowed to drive everywhere without a person in the vehicle. The startup expects to receive approval for this in a few weeks. And Blick says talks are underway to put its vehicles on the road in Germany too.
3: Who are the safer drivers, men or women? The statistics may surprise you. Men are more likely to speed and drive drunk, and are more likely to cause serious crashes. In many countries, women drive just as much as men. But in India, fewer women get behind the wheel. We meet one instructor who's driving change.
4: ऐसे बचपन से ही एक लड़के को कैसे कार देते हैं कि खेलो इसके साथ तो लड़कियों को क्या देते हैं डॉल क्या अच्छा लगता है स्पीड तो मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 years और पहले मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है वगैरह वगैरह पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी तो फिर ऐसे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट We live in a main dominating society. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ ये इससे मत खेलो उससे मत खेलो या फिर बहुत सारे restrictions. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब inferiority complex.
5: Second gear, full clutch. देखो कितना अच्छा है ना मेरा gearbox.
4: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है
5: अभी हमें फिर से राइट जाना है ओके स्लाइटली ओके
4: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहाँ तक हमें पहुँचना है बहुत दूर है अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊँ तो फिर उनको डर नहीं लगेगा बिकॉज बीइंग अ गर्ल लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है, उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह. लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है. बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगी तो.
6: Yes, stand straight.

0: कही भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए।
1: भरत ले, भरत ले।
0: जॉब नहीं है वो, क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो। ठीक किया, तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th डे पे, इट्स 10 डेज कोर्स, सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट, जो मैंने कमाई इन 8 सालों में, वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती। इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है, मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना, कोई भी कंट्री में, तो उतना पॉपुलेशन नहीं है, उतनी कार्स नहीं है वहाँ पे। और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। डिसिप्लिन क्या ना, डी भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो। एनीवन कैन ड्राइव, एनीबॉडी कैन ड्राइव, मतलब लेडीज है कि, मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है, मतलब कैब ड्राइवर्स भी, अभी तो है ना ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए, आपने देखा क्या? जो उन्होंने मुझे टैग लाइन दी है ड्राइविंग क्वीन, वो भी अच्छा लगता है। एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। कोई कच्ची डोर नहीं
2: है, मैं क्या करूं? That's all from Made Today. We uncovered hidden oil wells in Los Angeles, a green hydrogen project on Mallorca, an AI chauffeur in Estonia, and a trailblazing driving instructor in India. Take care.

0: doesn't know what to do next. This can happen at building sites or when traffic lights are out.
1: It's
0: also a very important data point for our training. Whenever someone intervenes and overrides the system, we can use it as an opportunity to include in our AI training and improve the system. On this test track near Tallinn, the cars practiced handling dangerous situations. This kind of collision no longer happens. The reaction time has been improved. That was definitely a major challenge and took quite a bit of development work to ensure that the algorithms were fast enough to optimize these systems, so to speak. In Estonia, Erik Safonov manages Blik's business. One of his potential customers is the founder of a cleaning company in Tallinn.
2: It's cool that I can do my work during the ride.
0: Vlad Belopolsky plans to use self-driving cars to transport freelance cleaning staff to and from his clients' homes. The goal is to eliminate the use of conventional cars.
2: Blik gives us an opportunity to scale without scaling our assets, and also it helps us to bring equality for the cleaners. Cleaners don't need to have a car.
0: In addition to business customers, it could also be of interest to families, Blik says.
3: For example, children to the school, wife to the to work, so they can use like one car for that reason, and that car can always move to back to the garage, for example.
0: But Blik cars are not yet allowed to drive everywhere without a person in the vehicle. The startup expects to receive approval for this in a few weeks, and Blik says talks are underway to put its vehicles on the road in Germany too.
4: Who are the safer drivers, men or women? The statistics may surprise you. Men are more likely to speed and drive drunk, and are more likely to cause serious crashes. In many countries, women drive just as much as men. But in India, fewer women get behind the wheel. We meet one instructor who's driving change.
5: से बचपन से ही एक लड़के को कैसे कार देते हैं कि खेलो इसके साथ तो लड़कियों को क्या देते हैं डॉल क्या अच्छा लगता है स्पीड तो मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती मेरा नाम दिव्या दीक्षित है सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स और पहले मैं जॉब करती थी इन्फोसिस में उसके बाद फिर मुझे थॉट्स आते थे कि मैं मतलब यही करने के लिए पैदा हुई है या वगैरह वगैरह पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे तो फिर पापा ने मुझे सिखाया कार सिखाई जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी तो फिर ऐसे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि हमें मम्मी पापा ने रोका हो उनका ऐसे मानना था कि तुमको सब कुछ आना चाहिए इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट We live in a main dominating society. उनको बचपन से ही ऐसे सिखाया जाता है ना कि जल्दी घर पे आओ ये इससे मत खेलो उससे मत खेलो या फिर बहुत सारे restrictions. तो हमें कैसा लगता था कि मतलब inferiority complex.
6: Second gear.
1: फुल क्लच देखो कितना अच्छा है ना मेरा गियरबॉक्स
5: जब स्टार्ट किया था तब इतना विश्वास नहीं था खुद पे कि मैं ये कर सकती हूँ या फिर इस लेवल पे जाएगा लेकिन लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि एक लड़की सिखा सकती है
1: अभी मैं फिर से राइट जाना है ओके स्लाइटली ओके
5: अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो सिखाने में मतलब वो वहां तक हमें पहुंचना है बहुत दूर है अगर मैं किसी एक लड़की को अगर मैं एक सुनसान रास्ते पे लेके जाऊं तो फिर उनको डर नहीं लगेगा बिकॉज बीइंग अ गर्ल लेकिन अगर एक जेंट्स उनको लेके जाए तो फिर मतलब उसका मीनिंग भी अलग है उनको डर लगेगा फिर कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं वगैरह लेडीज को मतलब लेडीज के साथ ही कंफर्टेबल होता है तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है अगर एक लेडी ही लेडीज को सिखाएंगे तो लेकिन वो कंफर्टेबिलिटी मतलब फर्स्ट डे से ही आती है कि एक लड़की है मैं उनको समझ सकती हूँ या फिर उनका उनको ऐसे शर्म नहीं आएगी कि मैं उनको ये बताऊंगी कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है तो फिर ये मुझे जज करेगी नो आई एम नॉट देयर टू जज इंडिया में या फिर कहीं भी कि ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर वाला जॉब लेना ही चाहिए जॉब नहीं है वो क्योंकि आप कुछ किसी और को इंडिपेंडेंस सिखा रहे हो ठीक किया तो फिर उनके चेहरे पे जो स्माइल आती थी 10th डे पे इट्स 10 डेज कोर्स सो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे अभी मोर देन 700 क्लाइंट्स आई हैव टॉट जो मैंने कमाई है इन 8 सालों में वो मुझे तो जॉब करके तो कभी भी नहीं मिलती इंडियन ट्रैफिक में सीखना बहुत मुश्किल है मतलब क्लाइंट्स जब बाहर चलाते हैं ना कोई भी कंट्री में तो उतना पॉपुलेशन नहीं है उतनी कार्स नहीं है वहाँ पर और डिसिप्लिन भी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन क्या ना डी भी नहीं है और अगर आप यहाँ पे सीख सकते हो तो फिर मतलब अदर कंट्रीज में जाकर तो चला ही सकते हो एनीवन कैन ड्राइव एनीबॉडी कैन ड्राइव मतलब लेडीज है कि मतलब जैसे कि अभी स्कूल वैन्स भी बहुत सारी लेडीज चलाती है मतलब कैब ड्राइवर्स भी अभी तो है ना ऑटो ड्राइवर्स भी आ गए आपने देखा क्या जो उन्होंने मुझे टैगलाइन दी है ड्राइविंग क्वीन वो भी अच्छा लगता है एंड आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ
6: दैट्स ऑल फ्रॉम मेड टुडे वी अनकवर्ड हिडन ऑयल वेल्स इन लॉस एंजेलिस A green hydrogen project on Mallorca, an AI chauffeur in Estonia, and a trailblazing driving instructor in India. Take care.